0: भाई
1: बिल्कुल बस
2: डीर डीर बस टपू सही थरस तरन्नुम तासरो डीर जबरदस्त
0: ना सही होगा ना
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ना ना ना ना सही अजमल
0: और प्लीज प्लीज ये खबर है तो कौन का ना दगरे से दादा जी कम ज़्यादा लिस्नरान भी करना देखते हुए प्लीज वाले लगने भी लगो लग मौका वर्क वही करना
1: बिल्कुल दा ऐलान मुंगा जी जारी को खा
0: प्रोग्राम
1: की सेगमेंट्स की ओल्ड न्यू का ना
2: आयजा
0: जी जी
2: टपी सिर्फ मुंग तक हो गए बल चाहता हूँ की हाँ
0: सही
1: था आयजा डी चाहता मन ना शुक्रिया मेहरबानी जी
2: डेरा मानना खुशहाली
0: वालेकुम
1: वालेकुम।

0: सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: We're the station that really does play today's best music with 30 minute all hit power plays.
3: Here we go.
2: Yeah. Guaranteed.
4: Dilbar Music Marathon.

93 दिलबर एफएम चार सदीना बिल्कुल लाइफ बिल्कुल बराहरा स्टोरी माता एहसानुल्लाह मोहम्मद वगले की गयो दा प्रोग्राम तासुता खुसूसी नशर कई दा प्रोग्राम तासुता खुसूसी स्पॉन्सर्ड कई पैलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड हैदर मोहम्मद अस्पताल पे खबर खार हैदर मोहम्मद अस्पताल चार सदा और हैदर मोहम्मद अस्पताल सवाबई दगा प्रोग्राम तासुता नशर कई और तासुता स्पॉन्सर्ड कई तास्टोर तरी दगा याद भी छे तर सबा यानी तर इतवार रोज पूरी जमुंग द हैदर मोहम्मद अस्पताल जे सुमरम ब्रांचू ने दी यानी दगा द्री ब्रांचू ने दी जमुंग दगा द्री वाला ब्रांचू ना तर सबा रोज पूरी बंदी और इंशाल्लाह दो पीर द दगा रोज ना यानी द यकम जून न बजे गम दे द खैरा जमुंग द हैदर मोहम्मद अस्पताल द द्री वाणो अस्पताल नो दोबारा आगाज की गई और दगा आगाज के बाद जमुंग द डेरू बीमारानो जमुंग द आग बीमारानो द आग कड़ी दिल बीमारानो कम कड़ी दिल बीमारानो जो डेर इलाज न कड़ी दी डेर गड़ी दिल दी डेर कड़ी दिल दी खुब्याम न दी टिक शुवी ब्याम न दी खश शुवी द आग खलगो द बारा बजमुंग यो खास ओपीडी की गिनो मेहरबानी ओ की कतासु द पेखवरी कतासु द चार सदी कतासु द सवाबी कतासु द फर्स्ट जून यानी द पीर पोरस बांदी जमुंग द हैदर मोहम्मद अस्पताल चक्कर राव खयो जमुंग द दगा तकड़ा डॉक्टरानो साहिबान न बा यो डेर तकड़ा यो डेर आला इलाज तरला से गई चूंकि अस्पताल जगह में खबर अतरी दी अगब इंशाल्लाह मुंग सवाल बखपल प्रोग्राम के कू या नंद शपी प्रोग्राम के मुंग कू तो चूंकि माच कल तो प्रोग्राम शुरुआत का वोलो नो मत दाख पेगाम रावर से दलू ची फर्स्ट जून दे फर्स्ट जून न डेर लिस्नर जमुंग खबरदार हुई वो कम लिस्नर जमुंग द फर्स्ट जून नवी खबरदार नो अगर टोल तो वेल गाड़म ची द पीर पद गौरस बांधी द नवी म्याश्ती यानी द जून द म्याश्ती पहले ने तारीख दे और दगा तारीख की आवाज तारीख न बल्कि दगा तारीख जमुंग द पार अलग न बल्कि बेइंतहा डेर इजाज जरूरी दे जमुंग द पार डेर मुहिम दे वाली जो पदगा तारीख बांधे जमुंग द कामयाबो मुंग यो कदम अगस्ते पदगा तारीख बांधे जमुंग द खुशालो कदम मुंगा अगस्ते यानी पो फर्स्ट जून बांधे पो दो जरा स्वर लसम की जमुंग द हैदर मोहम्मद अस्पताल आगा शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह दगा दोलस काला जमुंग द हैदर मोहम्मद अस्पताल क्योंकि दो वाल दी पो फर्स्ट जून बानी द दिसरा सरा मुंग द फर्स्ट जून पो दगा तारीख बांधे द फर्स्ट जून पो दगा रोज बांधे मुंगा पो दो जरा नूर लसम काल की द बैलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड आगाज करे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ददी हम दगा वो कि दुलू वाल दी यानी सेवन ईयर्स ददी पो कि दुलू वाल दी वाले जब दो जरा नूर लसम काल के जमुंगा आगाज से वो माता उसम याद माता उसम याद की जब कम पकम तारीख बांधे पकम फर्स्ट जून बने मुंग ददी आगाज को वो नुपागा तारीख पागा वर्ष बांधे मुंग चकल दी द नुम दा सिलेक्शन उकड़लो वाले जब मुंग दा नुम दे टोल न देर मुख्तलिफ देगा ना जब मुंग चकल तासु यो चकल तासु दे कॉस्मेटिक्स नुम आउरे नागरी को बोले या चरता दो या बोले चरते जिनी नुम इखाउ देवी या बोले चरते अलग नुम इखाउ देवी या बे बोले चरते दो या बे बोले चरते दो द जनावर नुम इखाउ देवी या बे बोले चरते द बल्स नुम इखाउ देवी गना जमंग बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान वाहिद दा सुनुम दे वाहिद दा सुनुम दे चिदा द दद यो बूटी नुम दे जी यो दा से बूटे जी अगद स्किन द मसलो द पारा द मख द पारा डेर जरूरी दे लगन बल्कि डेर जरूरी दे और खास कर दा प होम्योपैथिक मेडिसिन की द यो होम्योपैथिक मेडिसिन नुम दे कम दी बैलाडोना वही लेकी बैलाडोना भी अखपल ताकत हुई बैलाडोना 200 बैलाडोना 1 एम बैलाडोना 30 और दा खास कर दा आगे चाह दा पारा दा मेडिसिन और के लेकी कम खलक दा खबर कही ची जमा वजूद की यो जेम रोग न दे या ची कम खलक दा खबर कही ची मतलब जमा पर मख बानेम तोर वाले दे जमा टूर वजूद तोर तोर दे और जमा वजूद भी खिल का आगा जोड़वाले पकी बेनते हाड़ इर जाते आगा जवानी पकी निश्चरे चिचड़वाले पकी बेनते हाड़ इर जाते नो अक्स में उपाधिक डॉक्टर लाल शही नागा बता अमंग तासु लोगों रखा कर दा कर दे जमंग दल बैलडूना नमंग पति की तासु ता बैलडूना मेडिसिन हम रायो जे कर दे जितासु इस्तेमाल हुई जस तासु दे वजू चिकम ची चढ़वा ले दे तासु दे वजू चिकम बिड़ा बुढ़ावा ले दे तो कबान दे खत्मी गे ओ तासु तब यूडी रे बेहतरीन हो यूडी रे आला फायदे मिलावेगी ना बच्ची बोलू इश द खबरें मतलब मिदार है द खबरें मतलब मिदार है जिकले जमंग द बैलडूना द दगा द कॉस्मेटिक्स आगाज के दलों द दे नुम मंग गर्जदिल जमंग लसनुम कीदू मंग लसनुम कीदू नो अल्लाह दे अल्लाह दे डिर उमर वर की डॉक्टर से मोहतरम ला डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद साहिबानु ची अगर की नस्ल उपदी बाने बाकी रिसर्च शुरू और रिसर्च न बाद चिकम

यत जड़त दछान गुरी चिपाति बपर हर्षी तड़त दछान गुरी चिपाति बपर हर्षी।

0: सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अतो बजो नवाखला माजीगर तरसलो रो बजो पूरी तासु तशरीफ रवड़े छे नुपा तैयार साथे बिलाल प्लाजा अल सेद CNG ता महामख कोंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी मजीद द मालूमात द पारा याद नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर राबितो के 0314 15 13 232 यानी के 0314 15 13 232
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
1: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स Proprietor Zeb Brothers, phone 0938273265.
3: टूपी मेडिकल केयर सेंटर टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ती अव इतवार पोरस द शहर नौ बजे नवाखला तरमाजीगर सलूर पूरी डॉक्टर शहजाद फिजियोथेरेपिस्ट द जुमे हफ्ते और एतवार पोरस माजीगर सलूर बजो नवाखला तरमाखाम अतो बजो पूरे और दे सरसरा डॉक्टर इमाद जमान से शुगर स्पेशलिस्ट वा द जुमेरात पोरस सहर द नौ बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर बजो पूरे ओपीडी कवि 24 घंटे सर्विस लेबर रूम मेडिकल स्टोर अल्ट्रासाउंड इको ECG जनरेटर सहूलत और पेशेंट मेडिकल वार्ड्स नो पता या साथे टूपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा मेले लार टूपी मोबाइल नंबर 0335-666-2878 द्वेम नंबर दे 0336-444-5888
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk
5: You're just seconds away from more of your favorite music on 94
6: Your family channel In your own town Listen Radio Dilbar
4: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par www.radiodilbar.pk

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज,
1: We'll be back. Right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidishu bimarano the para the omid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general aspatal branch ostaso pakhar sababai ki pranistashuida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol wadi nuzar tarzara the Heather Mumman homeopathic general aspatal the sababai branch intikhabu. पता याद साथ ही मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार प सवाबई की हूँ
3: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman china stationery aw har qisam stationery batausta pa wholesale rate milawegi da school aw college da para da mukammal sit pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe no pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Komite Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 0311-8353-514 Dwem Number de 0303-8852-138

हाँ कुर्बान सब जमाई बजी सासुंगा नन्हे कम दे मौजू लक कम दे नो कम प्रिय के दे जी दीवान ब्याह बच्चा उसी ब्याह दे नो तासु ये वो खबर जी कम दे नो मास्टर शेर खोले शे देखना कच्चा कुनो ब्याह बच्चा कम दे नो गागुने कोई शुए कोई की खबर न पुए कजान न पुए नो ब्याह जी कम दे नो दी के समागुना निश्चित जी दी किस कम दे नो सासु

ये जिनक हो ये लखानो खामोश ही की बना खा यो एक घंटे तो पर रागले हम आओ यो एक घंटे तो पर जिकम देनो जमा आउस्ता सो दगा मलगर थिया जिकम देनो हम दग शांते कायम उदायम भाई और दग शांते जिकम देनो जारी सारी भाई जरूर बराजे यो जरूर बराज कम देनो अखफल हाजरी बलगवे यो ब्यावा अरमानू कोई

0: को मेहताब तलोदी बात कर रहा हूँ, मनसेरा से।
1: मेहताब, मेहताब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खरीत से हैं, फिट एंड फाइन हैं, अच्छे हैं, हशाश बशाश हैं आप?
0: शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा चलें आज फिर कॉल कर लेते हैं। वैसे तो मैंने एफएम सुनना छोड़ दिया है, तो आपकी आवाज़ सुनते हैं फिर दिल करते हैं कि कॉल करूं।
1: हाय अल्लाह, एफएम छोड़ दिए, आवाज सुनते हैं और फिर
0: बस एक वो भी एक हादसा हुआ था, रेडियो पाकिस्तान पे एक आरजे था, स्कूल टाइम से उसको सुन रहे थे, तो एक साल पहले उसकी डेथ हुई, तो उसके बाद जो है ना बस दिल सा टूट सा गया, मतलब सुनने का दिल नहीं करता।
1: दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तनहा रह गए।
0: कैसी गुजरी है, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: ईद अच्छी गुजरी, आप अपनी बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी है?
0: अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो ऑन ड्यूटी ही गुजरी है, ड्यूटी पे थे पेशावर में, तो अभी इंशाल्लाह घर जाएंगे एक महीने के बाद, महीना और गुजारेंगे।
1: सही, तो भाभी हमारी जो है ना कोई कॉल वगैरह नहीं करती होती, हाल है वाला आपका नहीं पूछती, या मतलब जो है ना आपको थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते होते हैं आपकी डिबरियां शिबरियां थोड़ी टाइट नहीं करती क्या?
0: कौन?
1: हमारी भाभी।
0: शादी अभी हुई नहीं है
1: तो शादी नहीं, मुझे देखें इस तरह तो छुपाता नहीं होता बंदा, आपकी मुझे लग रहा है शादी हुई हुई है।
0: नहीं नहीं शादी भी इंशाल्लाह शादी करेंगे, अभी इतनी उम्र ही नहीं है ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: सच्ची बताऊं मैं काफी टाइम के बाद मैंने रेडियो शो में कॉल करना स्टार्ट किया, वाहिद एक आप हैं कि बस दिल करते हैं कॉल करें।
1: चलें, ये तो आपकी मोहब्बतें हैं कि आप इतनी मोहब्बत से, चाहत से और इतनी अपनायत से हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और दिलबर एफएम सवाबी पे आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सवाबी और सवाबी के सराउंडिंग एरियाज में आपकी आवाज सुनी जा रही है, क्या कोई मैसेज देंगे, क्या कोई पैगाम देंगे? और आज का हमारा मतलब हम यहाँ भी ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी बात है, कौन सी वाली ऐसी बात है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा खुश होता है, आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है?
0: मैं तो हर टाइम खुश रहता हूँ, फ्रेंडली रहता हूँ।
1: नहीं, हर टाइम के बाद जो है ना वो अलहदा है, ठीक है, आप हर टाइम को छोड़ें, कोई एक बात बताएं जिस वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा खुश होता है।
0: ऐसी कोई बात ही जहन में नहीं आ रही, सैड ही रहता हूँ ज्यादा।
1: सैड ही रहते हैं, किस वजह से सैड रहते हैं?
0: बस रहता हूँ, वो नहीं बताऊंगा एफएम पे।
1: चले मैं समझ गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सुनने वालों को क्या कोई मैसेज देंगे? जी
0: एक नईम हजारवी सॉन्ग प्ले कर दें, गाना ला छोड़ो, चलो कोई गल नहीं,
1: गाना ला छोड़ा, चलो कोई गल नहीं, अगर ना लाया तो चलो कोई गल नहीं, ठीक है?
0: ठीक है इंशाल्लाह, फिर भी हम आपको याद करेंगे, कॉल करेंगे।
1: चले बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप हमारे साथ दे रहे थे पिशावर से दारूज कमदन मुक्सर पेखोर ना प्रोग्राम की शामिल छो जी बेस कमदन दी दमान सीरी दी आओ पेखोर गज कमदन दी अकबल जॉब पे अकबल ड्यूटी के पाक फोर्स कमदन हिस्सा था और जनाब पाक आर्मी की जगह दी अकबल सर्विसेज वर्क है मना ना शुक्रिया चिता सुराले और बेसिकली दासु दमान सिरी और दिल दुज गम देनो पर दिल भर रेडियो वन ता सुराले जनाब वली खालर गुरु मुक्सर सुख राज जखम जैना 0938-280-495 कम ऑन नेक्स्ट कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम सुख जखम जैना जी
2: अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम बखैर न बखैर सुख खबर के जखम जैना مہرین دا صوابی نا مہرین خیم او خبر اوبر یم تو خی
2: الحمدللہ بھائی برابر
1: تو روٹے کھوڑے لے کنا
2: ہاں
1: تو روٹے کھوڑے لے
2: ہاں ول الحمدللہ
1: لوگا کھوڑے لے او زیا تو کھوڑے لے
2: نا روٹے ہو بس دو نا کھوا
1: نو تو خود دمرا روٹے خوری دمرا روٹے خوری چی خبر نہ پتہ لگی हेलो मेहरीन मेहरीन तो बचकम उस और का मेहरीन लवाते वही मेहरीन ता था बजस हुए मो बर के फबल कॉलर गुरु अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके जी शुक्रिया जी डेर मन ना शुक्रिया चिता सो ब्याम राले ओ अफल रात गए ले ले ले ले ले ले या खुदे पक या मिनट موجود

डॉक्टर से मंगल तरफ ना सलामों ने कबूलो मंजूर की जी काका से सलामों ने की वालेकुम सलाम और साइड ना मुबारकबाद कबूलो मंजूर की मन ने थैंक यू सो वेरी मच जी नाजिया फ्रॉम प्लांग खान अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भाई संग ये प्रोग्राम और हम मुबारकबाद में कबूल की जी डेरा मन अस्सलाम वालेकुम भाई जान सलाह टेल बन अस्सलाम ने की वालेकुम सलाम डॉक्टर भाई बेलाडोन कामयाब तरीन सफल सुलो लाडले जमा बखल मैसेज जी ताबीर द कुटाना मैं वो लड़की हूँ जो पहले दिन से बेलाडोना यूज कर रही हूँ और अभी तक बेलाडोना यूज करती हूँ इंशाल्लाह मजीद भी बेलाडोना ही को यूज करूंगी ताबीर फ्रॉम क्वेटा वेल डन सलाम डॉक्टर भाई संगे सुमेरा एहसान द मलकन जी पखैर अली श्री मशी जी सलाम किंग ऑफ सुशलो किंग ऑफ की बिगे दबा मैं एमएस मरा लेगा कहना लाइबा यूजल च मैसेज रहा लेकिन दोबारा मैसेज मरा लेगा कहना गोरो मैं कन्फ्यूज कही ना मेहरबानी को यूजल मैसेज रहा ले गई गोरो बार बार मैसेज रहा ले गलो माने वो रेकार नहीं की सिर्फ जस्ट वन टाइम प्लीज बेलाडोना कास्ट में पाकिस्तान वो मकलीजा द एच जी एच दो मकलीजमो डेरे डेरे जाते मुबारक अशा द क्रिमिनल बेमा कोर्स हुई द सलबी उख्तला ग्रुप घट डरा रवाना दो द मेगा बयान द तासुम तक मोटर गटल वाली सरूर सुरबे बने बाजार के जमुन क्रीम मिलावी और तो बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम मिलेगी सिर्फ यो डबे द क्रीम सा लो यो वाले ले दो वाले इधरे वाले सलूर वाले किस्मत है सब पता लगी सासु पर किस्मत किसी दी नो बिल्कुल न जाए कोई मेहरबानियों की जान ला यो द्वाद्री सलोर पिंजग वो अत नस सुपर डबी जान लगा शेषे वाली हो दनवी सीरीज न खुंदुम वाली आओ तो गर्मी पता का मौसम की द बेलाडोना इस्तेमाल हो गई जी गुरु चुनो मैसेज चारी अस्सलाम वालेकुम भैया संगई भाई तासुवेल ईद नबाद बा बल खुशहाली उमदा एनिवर्सरी न अलावा अगर तो हुआ है ना इट्स मी फातिमा मुहम्मदी सबर करना गोरो टोले खुशहाली यूज बने मैं प्रेरक है ना यूज बने गोरो टोले खुशहाली में खत्म हुई जी तो खुशहालो का सफर जारी उस साथ है मजे बने बेटा मंगो आयु दालस रोज बदी खुशहाली की तीरी की जी अब या और पसीर लस रोज बस जमाने बेटा बोसो के इंशाल्लाह अल्लाह करे खैर हुई आगा खुशहाली बहुम नसर श्री को जी दीर ते जगर लेना राजी दीर ते यूज तेरे तो भी मिस्ती दिवस ते खा और पसी खानी फ्रॉम सवाबी सर हमारे तरफ न भेजा तो मुबारक जी और फातिमा मोहम्मदी हैप्पी एनिवर्सरी डेरे डेरे जाता नादिया सदफ हम मुंग मुबारकबाद रही डेरे मनन जी खानी फ्रॉम सवाबी डेरे डेरे जाता मनना नेरा मनना मनना न महीन डॉक्टर जान भाई न्यूट दे वाकई देर तक कमाल लड़क दे गुरु तो बार बार दावे मकान जो मंग नवी नवी सीरीज लॉन्च को खा जान के सीनियर चुम तबेर द जुन द लगे द कास्मेट द शुरुआत ने जितने यूसीज लॉन्च कर दे वहां तरह से बोरे मांग चली बेलाडोना बर्त म्याश पर म्याश बानी सीरीज बदली जी अब या देख कम जून खुश मंग नवी नवी सीरीज नोर रहा वानी जी